0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1 मेगाहर्ज।
1: आदरणीय श्रोता, अब तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम गोस्पल एक्सप्रेस।

0: 年龄个数呢先了，结果年龄个随便的并接到机上出大林高呀孤独。年龄三个不来，其实每边有些刷不对过，估计亚那其实应到管理亚爱到不发家的追回。卢卡，结果的有比上个兵，两个不给他到个多。我嘞，今年的年轻，习惯下我们，来高压装么怎么没啥难度？我亚个来，虽然还来个么夫，留嘞我亚，我高压个干着去了。我里面为个呀个屁股喊我个为个累了呢，为个让大家的了解到苏南提了，嗯，苏南呢天的干么的？阿里波多上达了，古日久，我里母亲母奴的上去的，寡土寡那种个都，一说母奴的个大堂个回来，都不来什么母奴呀，提不来个天呀呢，上辈子谁个追过大家，现在的个好，没比那个巴拉个。个年龄的，其实他这个看望准备没那的那些，比这里的也给比么久，而来去他过去，比在我爸爸呢，到那么久，每边没那的上什么人注意到，我无米到去过不问个点比到，俺们啥时候看了嘛？估计其实，因过去我呢，是还也得越过去，主要从过到一个俺们目的也会。卢卡加过的有比库库波特的多个多，哎呢，我可能大家的了，记得说呢，能跳过黑卡，如果是马上的变化，我估计在右边你那边，这个都你都没把没说的阿妈，没比你个阿我识大家的，个呀，上边都西路住一个，什么大家的，有过黑，阿婆的隔壁，得了，上边都西里亚的，老不。几百块钱收入最嘛，结果满那边说吧，刷题最过瘾，就算阿爸大夏天没变到推开个过到，也一个娃一个弄完那种个衣领，弄完个大夏里也一个也，即他个些么呢？到那这边他个些已经在发生着呀，祝你我跟伊们到出大个大家比赛呀那祝你。结果刷题阿就多一个，应当结果比较推给到两间的顾客。一上图，图课堂最麻古的木头，第三个天呢，把那个捏那面最古的卡设计费。一上图课堂，图给阿拟定，比那么大我设计古一千嘛，没么木头看。出大家出那大家，我老公我点比嘛，请把那个年米个他透过西比卡西亚那地费，因个的视角看，推给到古达亚那地上，因个你听，他听过啥哈能不提大家年那地上，要比年米比，去个他亚那不提个呀，给那地大家比在亚一个菩萨，他的。没么么努呀，他是多一个古道亚那地上，因个么呀，白不，年龄个多一个，因上大个看过，年龄个这个么好，因上个体大家说呢，古都大家，今年个上个地下的呢，天比古好，没么么努呀，上得不呀，大一大个，都哈我呢的，破个古道呀，上差呀。तो इम गु दृष्टि को न स्वेगु कुताया थथे याई बोले इम संग गथे ताका सुन गुदु धका छी थुइके फै इम गु दृष्टि को अवस्था थुइके गु लक्ष्य तया दिस लुका चागु अध्याय पीस नेगु पी चागु पद के धाट गुदु वो मिसा वेक या त छु गु ख वेक न सी ढुकला धका ताका ग्या ग्या वेक या गु तुति भोपु वल अले वेक या त天他个累，拉不康，不高兴个年龄，都下不了。阿来外国人大了，今天马祖从比耍峡谷岭，从个累了呢。啊，杨国红，要比你那么病，请去个做好做病，没弄到八那个点比啊，做那第一了。请去个做完看完做病，没弄到八那个点比啊，做那第一了。你们上去的看过没得个村？大家做那大家，身边的事就要跌了。把那个年龄注意过，西边和边是亚那地上，突然起过，没变到推给过什么的，大当过是大注意。估计亚那起，马路的那些关键的刷夫得给费，我应得过哈里亚的费。同样个不准，你那地过来，其实个西的呢，不没说呢，少话比嘛。 주무세요. 미나미 빈 심사 나크티니 해 저거 바이블리아 프로바브살리 식초고 아티키 로포케나디마 소몬 빅터나 트레아디고 하스나 지구 해 네팔 바사야 라디오 자조 스파크 마이 핏 지구 비스와스케 참카야 비 바레 치케 쇼 프로티크리아 수자브 두사 스와푸 타야 디페이 उकिया नीति जिम के जिमगो मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुबा परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ। Good News FM Radio 105.1 MHz।